0: चेहरा लाल हो रहा है।
1: दोस्त से मिलने की बात के वक्त ताम का चेहरा सुर्ख हो गया। लगता है कोई खास दोस्त है।
0: इससे मुतालिक तफसील आगे आएगी।
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, मैं बर्फ देखना चाहती हूँ। अगर आप इसे याद कर लें तो अपने आइंदा के इरादे का इजहार कर सकते हैं।
0: और अब आज के कलीदी जुमले की तशरीह। युकी का मतलब है बर्फ और मिताई देस यानी देखना चाहता हूँ। अब आज का नुक्ता, मैं ये करना चाहता हूँ, ये बताने के लिए फेल की मस शक्ल से मस हटाकर उसकी बजाय ताई लगाया जाता है।
1: फेल मीरू यानी देखना की मस शक्ल है मीमास, तो ये बनेगा मिताई, ठीक है ना?
0: जी बिल्कुल ठीक। और आखिर में देस लगाने से जुमला शाइस्ता हो जाएगा। आज के मकालमे में दो और जुमले, होक्काइदो नी इकिताई देस और तोमोदाची नी आइताई देस भी इसी अंदाज के हैं। दूसरा नुक्ता हरूफ जार का इस्तेमाल है। मफूल या मकसद के लिए हरफ जार ओ इस्तेमाल होता है, लेकिन जब इसके बाद का फेल ताई शक्ल में हो तो उसकी बजाय दूसरा हरफ जार गा इस्तेमाल किया जाएगा।
1: मैं बर्फ देखूंगी की जापानी होगी युकी ओ मिमास, जबकि मैं बर्फ देखना चाहती हूँ को कहेंगे युकी गा मिताई देस।
0: जी हाँ।
1: और अब वक्त हुआ है मश्क का, तो सामेइन सुनिए और दोहराइए।
2: मिताई देस, युकी गा मिताई देस, युकी गा मिताई देस।
1: जी सामेइन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
0: जापान में क्या करने का इरादा है, अब इस बारे में एक मकालमा सुनिए।
3: निहोन दे नानी गा शिताई देसु का?
4: रामेन गा तबेताई देसु।
0: अब इस मकालमे की तशरीह।
3: निहोन दे नानी गा शिताई देसु का?
1: जापान में आप क्या करना चाहते हैं?
0: निहोन दे के मायने हैं जापान में। क्या करना चाहते हैं पूछने में क्या के लिए नानी इस्तेमाल किया जाएगा। ताहम इस सवालिया लफ्ज नानी की बजाय दोन्ना को तो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि मकालमे में हारूसान ने इस्तेमाल किया है। शिताई फेल शिमास यानी करना की ताई शक्ल है।
4: रामेन गा ताबेताई देसु।
1: मैं रामेन नूडल्स खाना चाहता हूँ।
0: ताबेताई फेल ताबेमास यानी खाना की ताई शक्ल है।
1: तो सामेइन मुकालमा सुनिए और जवाब दोहराइए।
2: निहोन दे नानी गा शिताई देसु का? रामेन गा ताबेताई देसु, रामेन गा ताबेताई देसु।
0: अब आप मजीद जो करना चाहते हैं उनके बारे में बताने की मश्क कीजिए। मसलन आप क्योतो के किंग काकुजी मंदिर जाना चाहते हैं। मंदिर के नाम का तलफ्फुज़ है
2: किंग काकुजी, किंग काकुजी।
0: और जाना है
2: इकिमास, इकिमास।
0: मैं किंग काकुजी जाऊंगा, ये जापानी तो होगी किंग काकुजी नी इकिमास। अब आप बताएं मैं किंग काकुजी जाना चाहता हूँ को क्या कहेंगे।
3: किंकाकुजी नी इकिताई देसु, किंकाकुजी नी इकिताई देसु।
0: अगर आप किसी के लिए तोहफे के तौर पर गर्मियों का हल्का किमोनो युकाता खरीदना चाहते हैं तो ये किस तरह कहेंगे। युकाता का दुरुस्त तलफ्फुज है
2: युकाता, युकाता।
0: और खरीदने को कहते हैं
2: काइमास, काइमास।
0: तो सामीन कोशिश करें।
3: युकाता गा काइताई देसु, युकाता गा काइताई देसु।
1: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला मियां ने ताम से उस वक्त कहा था जब ताम का चेहरा सुर्ख हो गया था, इसे इसी तरह याद कर लें।
5: दाइजोबु,
0: दाइजोबु यानी क्या तुम ठीक हो, मुखातिब के बारे में फिक्रमंदी का इजहार है। शाइस्ता अंदाज में इसे कहेंगे दाइजोबु देसु का। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप ठीक हैं और आप कहना चाहें मैं ठीक हूँ तो यूं कहेंगे
2: दाइजोबु देसु, दाइजोबु देसु।
1: अब ये जुमला मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुने।
6: दाइजोबु,
7: दाइजोबु,
8: दाइजोबु।
1: सामीन अब आपकी से दोहराने की बारी है।
2: दाइजोबु।
0: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनिए। उन हिस्सों पर खुसूसी ध्यान दें जिनमें ताम अपने आइंदा के इरादों का इजहार करती है।
9: निहोन नी वा नारेमाशिता का?
10: हाय।
9: निहोन दे दोन्ना कोतो गा शिताई देसु का?
10: युकी गा मिताई देसु, होक्काइदो नी इकिताई।

0: 北海道、いいね。
1: あと、友達に会いたいです。
2: おや？
0: 大丈夫？顔が赤いよ。
3: はるさんの知恵袋。
4: अब हारू सान की जंबील का कॉर्नर। आज के मकालमे का मकाम हारू सान हाउस की बैठक है। इस मुनासबत से जापानी घरों और तर्ज जिंदगी के बारे में कुछ मालूमात पेश हैं।
5: कमरों की तादाद और उनकी तरतीब के लिहाज से तो हर घर मुख्तलिफ होता है, लेकिन जापानी घरों में बुनियादी तौर पर दो तरह के कमरे होते हैं, जापानी तर्ज के कमरे और मगरबी तर्ज के कमरे। मगरबी तर्ज के कमरों में लकड़ी का फर्श या कालीन बिछा फर्श होता है। इनमें आमतौर पर मेज कुर्सियाँ वगैरह इस्तेमाल होती हैं, जबकि जापानी तर्ज के कमरों में सरकंडों की बनी हुई मोटी चटाई ततामी का फर्श होता है और कमरे में नीची मेज होती है। अहले खाना मेज के गिर्द फर्श पर जाबुतोन कहलाने वाले कुशन रखकर बैठते हैं।
4: अनवर साहब, जापानी तर्ज के कमरों में रात को सोने के लिए ततामी पर बराह रास्त बिस्तर बिछाए जाते हैं, जिन्हें फुतोन कहा जाता है, ऐसा ही है ना?
5: जी हाँ, लेकिन आजकल अपार्टमेंट्स आम होने और लोगों का तर्ज जिंदगी तब्दील होने की वजह से अब जापानी घरों में मगरबी तर्ज के कमरे आम हैं। तहम कई घरों में दोनों तर्ज के कमरे होते हैं। इनमें कम से कम एक ततामी वाला यानी जापानी तर्ज का कमरा होता है।
4: ततामी वाले कमरे में रहने का तसव्वुर भी काफी अच्छा मालूम होता है।
5: जी बिल्कुल। वैसे मगरबी या जापानी तर्ज से कतई नजर जापान में घरों में दाखिल होते ही जूते उतार दिए जाते हैं। घरों के अंदर अक्सर स्लीपर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जापानी तर्ज के कमरे में दाखिल होते वक्त वो भी उतार दिए जाते हैं। सरकंडों से बनी ततामी पर नंगे पैर चलना बहुत आरामदेह महसूस होता है। सरकंडों की खुशबू भी सुकून बख्श होती है।